0: और इन बक्सों को एक बार फिर से खोला और पूरी तलाशी के बाद पुलिस यहां से निकल गई। देखिए कि बक्से में किस तरह से कम्बल और कपड़े रखे हुए हैं और इन्हीं कम्बलों के बीच में, कपड़ों के बीच में कैश को छुपाकर रखा गया था। तो पुलिस ने इन बक्सों की तलाशी ली और ये जो बक्सा है जो हमने पहले दिखाया था जिस पर रामराज कोच लिखा हुआ है, हालांकि इस बक्से में ताला बंद है लेकिन ये बक्सा फ़िलहाल यहीं पर रखा हुआ है। इस बक्से का ताला नहीं खोला गया है कि बक्से के अंदर क्या है, तो ये बक्सा यहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को पुलिस ने बड़ी बारीकी से देखा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये दस्तावेज पुलिस ने बहुत बारीकी से देखे और पुलिस ने काफ़ी लंबी यहाँ पर पूछताछ की, जाँच की और पुलिस उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो ये सारे दस्तावेज अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं जो दोनों यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका?
1: हमारा सुंदरलाल नाम
0: है। कैश यहीं से बरामद हुआ था 5 जून को ना?
1: हाँ, वो तो कैश बरामद हुआ, वो तो बाद में न्यूज में निकला है, तब हमको भी जानकारी हुई कि कैश यहाँ से बरामद हुआ है।
2: अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तमाम बरामदगी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये राम जन्मभूमि थाना है और इस राम जन्मभूमि थाने में खड़ी इस ब्रिजा कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा इस ब्रिजा कार को देखिए, ये ब्रिजा कार जिसका नंबर है UP42AP6054, दरअसल ये ब्रिजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। तो चंदा चोरी से जुड़ी हुई तमाम जो संपत्तियाँ हैं पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है, चोरी से बनाई गई संपत्तियों को आइडेंटिफाई कर रही है, जब्त कर रही है, जिसके जरिए जो चोरी से धन निकाला गया है उसकी उगाही पुलिस आगे चलकर करेगी।
3: आजकल कुछ नकली राम भक्त अपने को सनातनी कह रहे हैं, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि गुंबज पर तो चढ़ गए उतर नहीं पाएंगे, गोलियों से भूंज दिया गया, चाहे मियां मुलायम क्यों न कहे, आज वो सबसे बड़े सनातनी बन रहे हैं। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और वहाँ की सरकार तत्पर है और दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे।
4: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है इस बात में। सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया।
5: अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है और आज सांसदों को उसी पैसे से खरीदना चाहते हैं। तो गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलल्ला का जो आंदोलन है वो रामलल्ला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे।
6: And the alleged embezzlement of donations at the Ram Temple in Ayodhya has now triggered a political war of words. Breaking his silence, RSS General Secretary Dattatreya Hosable described the alleged theft as deeply hurtful to the sentiments of devotees of Ram and appealed for patience and restraint. Hosable backed the special investigation team constituted by UP government, saying that those found guilty must face punishment, while urging people not to allow anti-Hindu and anti-national forces to exploit the incident. The Congress, however, has hit back. State Congress Chief Ajay Rai accused RSS of waking up too late, saying statements alone are not enough and demanding strict action and accountability.
7: जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।
8: राम मंदिर কত টাকা দিয়ে মানুষ বানালেন, কত সোনা, কত রূপো, কত দান, কত ধ্যান, আর আজকে রাম কার নাম আপনি বদনাম কর দিয়া, হিন্দুত্ব কার নাম পে খেলা আর হিন্দু ইজম কো আপনি ফিনিশ কিয়া। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। এবং ডিজিটালে যারা কথা বলতে চায় ইউটিউবে, একটু বিরোধিতা করলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং এফআইআর করা হচ্ছে।
9: শ্রী দত্তাত্রেয় হোসওয়েলে জি নে জো কাহা হ্যা ওহি ইস দেশ কে লাখো করোড়ো স্বয়ং সেবকো কে করোড়ো করোড় দেশবাসীয় কি আওয়াজ থি है और रहेगी। दूसरी बात, देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
10: इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव गांव में घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तभी वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, अनिल मिश्रा हों, गोविंद गिरी हों, चाहे गोपाल राव हों, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। अयोध्या वासी कह रहे हैं, मैं अभी दो दिन पहले दर्शन करने गया था, उसमें भी ये लोग व्यवधान डाल रहे थे कि दर्शन न करने दिया जाए।
6: And after the Ram temple donation theft trial exploded, another major temple finances are now under the scanner. The Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered an inquiry into allegations of misuse of donations at the temple. The move comes after claims of financial irregularities in the handling of temple funds surface. The committee says show cause notices have already been issued to those allegedly involved and the people who were involved in the finances in the donation counting process. An inquiry committee has been constituted to investigate. The chairman of the BKTC, Hemant Dwivedi, has assured that probe report will be made public. He's warned that anybody found guilty will face strict action.
11: सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी।

0: Well, let's take you through the top stories of the hour. An torrential downpour battered Mumbai, with several parts of the city receiving nearly 200 millimeters of rains in the past 12 hours. Due to heavy rain, four low-lying areas across the city have been inundated, triggering road cave-ins, tree falls and even house collapses. This has also disrupted road and rail traffic. Incessant rains have disrupted normal life in neighbouring Thane, Palghar, Navi Mumbai as well as the Pune region that has now witnessed landslides, road closures and waterlogged areas and evacuation of people from flooded localities. Now the continued showers coupled with India's IMD's prediction of extremely heavy rainfall alert forced the civic body to declare a holiday for schools and even colleges.
1: बारिश तो आएगी ना और बारिश आएगी, लेकिन विषय इतना ही है कि जो बीएमसी है प्री मॉनसून का जो मेंटेनेंस किया जाता है करीबन 300 करोड़ का किया जाता है, अभी उसको अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो पेड़ गिरेंगे, वहाँ पे मैनहोल प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसमें लोग गिरेंगे, तो जो मुंबई महानगर पालिका में जो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन का साइड इफेक्ट है।
2: देखिए, मुंबई में अमूमन जो बरसात होती है, जो मानसून आता है, वो 10-12 जून को आता है, लेकिन इस बार लेट आया है, 23-24 जून के बाद आया। उसके बाद भी महानगर पालिका जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई, न नाले की सफाई ठीक से हुई, न पेड़ों की जो कटाई छटाई होती है वो ठीक से हुई, न तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन आपको दिख रहे हैं, न तो मतलब एक अनियमितता बरती गई, भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है, उसका जो खामियाजा है वो मुंबई की जनता को उठाना पड़ रहा है।
0: Let's now turn our attention to more updates coming in at this hour. Now, the political battle within the Trinamool Congress has now intensified. Rebels have laid claim to the party headquarters and Mamata Banerjee has vowed to fight back. Launching a blistering counter-attack against the rebel camp, Mamata Banerjee asserted that the party office remains valid till 2027 and said that no one can evict the Trinamool or take away its headquarters. She even insisted that the party symbol and flag would remain with her faction and branded the rebels as traitors. Rebel camp claims that the faction has every right to enter the party office and has argued that the lease has expired. Mamata Banerjee has rejected those claims outrightly, insisting that the rebels have no legal right over the headquarters. Maintaining the lease is valid till 2027 and declaring that her residence will serve as the party office if required.
3: Education Minister, kokhono 6ta jelar daitte chilen, jela porishad, গ্রাম সহ পঞ্চায়েত তৈরিতে সাহায্য করেছেন এবং সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
4: যাহা পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যাহা পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যাহা পর আগর কাম করনা হ্যায় তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে
5: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए, उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में

0: Well, let's take you through the top stories. The hour, now torrential downpours battered Mumbai, with several parts of the city receiving nearly 200 millimeters of rains in the past 12 hours. Due to heavy rainfall, low-lying areas across the city have been inundated, triggering road cave-ins, tree falls and even house collapses. This has also disrupted road and rail traffic. Incessant rains have disrupted normal life in neighbouring Thane, Palghar, Navi Mumbai as well as the Pune region that has now witnessed landslides, road closures and waterlogged areas and evacuation of people from flooded localities. Now the continued showers coupled with India's IMD's prediction of extremely heavy rainfall alert forced the civic body to declare a holiday for schools and even colleges.
1: बारिश तो आएगी ना और बारिश आएगी लेकिन विषय इतना ही है कि जो बीएमसी है प्री मानसून का जो मेंटेनेंस किया जाता है करीबन 300 करोड़ का किया जाता है अभी उसको अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो पेड़ गिरेंगे वहाँ पे मैनहोल प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा उसमें लोग गिरेंगे तो जो मुंबई महानगर पालिके में जो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन का साइड इफेक्ट है।
2: देखिए मुंबई में अमूमन जो बरसात होती है जो मानसून आता है वो 10-12 जून को आता है लेकिन इस बार लेट आया है 23-24 जून के बाद आया उसके बाद भी महानगर पालिका जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई नाले की सफाई ठीक से हुई न पेड़ों की जो कटाई छटाई होती है वो ठीक से हुई न तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन आपको दिख रहे हैं न तो मतलब एक अनियमितता बरती गई भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है उसका जो खामियाजा है वो मुंबई की जनता को उठाना पड़ रहा है।
0: Let's now turn our attention to more updates coming in at this hour. Now, the political battle within the Trinamool Congress has now intensified. Rebels have laid claim to the party headquarters and Mamata Banerjee

0: Let's now take you through the top story of the hour. Now, torrential downpours battered Mumbai, with several parts of the city receiving nearly 200 millimeters of rain in the past 12 hours. Due to heavy rainfall, low-lying areas across the city have been inundated, triggering road cave-ins, tree falls and even house collapses and disrupting road as well as rail traffic. Incessant rains also disrupted normal life in neighbouring Thane, Palghar, Navi Mumbai as well as the Pune region that witnessed landslides, road closures in waterlogged areas and evacuation of people from flooded localities. Now, the continuous showers coupled with India, in fact, the IMD's extreme heavy rainfall alert, forced the civic body to declare a holiday for schools as well as colleges.
1: अभी बारिश तो आएगी ना, और बारिश आएगी, लेकिन विषय इतना ही है कि जो बीएमसी है, प्री मॉनसून का जो मेंटेनेंस किया जाता है, करीबन 300 करोड़ का किया जाता है, अभी उसको अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो पेड़ गिरेंगे, वहाँ पे मैनहोल प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसमें लोग गिरेंगे, तो जो मुंबई महानगर पालिका में जो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन का साइड इफेक्ट है।
2: देखिए, मुंबई में अमूमन जो बरसात होती है, जो मानसून आता है, वो 10-12 जून को आता है, लेकिन इस बार लेट आया है, 23-24 जून के बाद आया। उसके बाद भी महानगर पालिका जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई, न नाले की सफाई ठीक से हुई, न पेड़ों की जो कटाई छटाई होती है वो ठीक से हुई, न तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन आपको दिख रहे हैं, न तो मतलब एक अनियमितता बरती गई, भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है, और उसका जो खामियाजा है वो मुंबई की जनता को उठाना पड़ रहा है।
0: Let's take you through more updates coming in at the Savo. Well, the political battle within the Trinamool Congress has now intensified. Rebels have laid claim to the party headquarters and Mamata Banerjee has vowed to fight back. Launching a blistering counter-attack against the rebel camp, Mamata Banerjee asserted that the party office lease remains valid till 2027 and said that no one can evict the Trinamool or take away its headquarters. She even insisted that the party symbol and flag will remain under her faction, and even branded the rebels as traitors. Rebel camp, on the other hand, claims that the faction has every right to enter the party office. They've even argued that the lease has expired. Mamata Banerjee has rejected all of those claims outrightly, insisting that the rebels have no legal right over the party headquarters and maintaining that the lease is valid till 2027. She's even gone on to declare that a residence will serve as the party office if required.
3: Education Minister, কখনো ছটা জেলার দায়িত্বে ছিলেন, জেলা পরিষদ, আমসভা, পঞ্চায়েত তৈরিতে সাহায্য করেছেন এবং সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্য দিয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
4: যাহাঁ পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যাহাঁ পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যাহাঁ পর আগর কাম করতা হ্যাঁ তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়ে।
5: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হামারা রেসপেক্টেড দিদি থা, আপ দেখিয়ে উনকা তো উনকা লড়কা পহলেই উস ক্যাম্প মে চলা গিয়া থা। চন্দ্রিমা জি কাল জব পার্টি অফিস মে बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा दी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता, वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो अब देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था।
3: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত, পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন, এখন বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী, মনে রাখবেন। আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে। আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সার্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন, বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি। মনে রাখবেন আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
0: Let's take you through more developments coming in at this hour. Now, the investigation into the alleged Ram Mandir donation theft is now intensifying on multiple fronts. A key trust meeting is scheduled for the 6th of July. Decision on General Secretary Champat Rai's resignation will also be decided then. Investigators are examining the assets and income sources of the trust officials, probing alleged commissions in land deals, and scrutinizing banking procedures. The SIT has also identified as many as 12 properties linked to the accused Anukalp as well as Lovekush Mishra, with more assets under verification and possible seizure if it is found to be purchased during stolen donation funds. Meanwhile, the controversy has sparked sharp reactions coming in from religious leaders, with Shankaracharya Swami Sadananda Saraswati demanding a complete overhaul of the trust and greater representation of all the four Shankaracharyas, while other saints have expressed support for Champat Rai as he was quizzed again by the SIT. Meanwhile, there is no end to the politics over the Ram Mandir donation theft case. The opposition once again is questioning the Yogi government over the action taken by them so far.
6: इसकी मुझे बड़ी पीड़ा है, मन सच्ची आहत हुआ जब सुना कि ऐसा, वो भी भगवान के मंदिर में जिसे सदियों की साधना के बाद, कितने बलिदानों के बाद बनाया गया, और वहाँ पर वो भी अंदर रहने वाले लोगों ने कर डाला, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तुरंत ही SIT जांच के लिए ऑर्डर दिया, कहा कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और प्रसन्नता है कि 10 दिन के अंदर ही तेज़ी से जांच हुई, और तेज़ी से जांच में जब जो नाम आए उनको तुरंत जेल में भेज दिया गया, और जो दंडात्मक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर पता लगा कुछ और भी बाकी है, ऐसा संदेह बताया जा रहा, उन्होंने तुरंत 15 दिन की जांच और बढ़ा दी। इसका मतलब वो चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, छोटा हो या बड़ा, कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए, ताकि मुख्य बात है व्यक्ति नहीं बल्कि आस्था, केवल थोड़ा सा धन नहीं बल्कि धर्म, थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बल्कि आस्था, वो नहीं टूटनी चाहिए। लोगों के इतना विश्वास है लोगों को भगवान श्री राम पर, वो नहीं टूटना चाहिए। वो थोड़ा सा विश्वास टूटा कुछ लोगों की वजह से। मुसीबत ये है कि जिन्होंने उन पर विश्वास किया, हमारे आदरणीय चंपत राय जी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, संत हैं, शुद्ध चरित्र के व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया कि विश्वासघात हो गया।
0: Let's take you through more updates coming in at this hour. Shifting focus to more developments trickling in, the West Asia conflict has sparked fears of global energy crunch, with long queues for fuel and supply disruptions raising serious concerns worldwide. The opposition, remember, warned of an economic tsunami and a severe energy crisis. But the Prime Minister Narendra Modi says that India weathered the storm through timely decisions, diversified energy sourcing and even diplomacy. PM also launched a sharp attack on the opposition over its criticism during the West Asia conflict, accusing it of spreading fear as well as misinformation.
7: Jo halaat the unme gharelu gas cylinder ki keemat 2000 rupaye tak ja sakti thi, bade bade market experts yahi aakalan kar rahe the लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से दो दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है।
0: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, in a significant legal development, the U.S. Department of Justice has filed a detailed defense of its decision to seek the dismissal of the securities fraud case against the Adani Group. Now, the filing argues that the charges should never have been brought, describing the indictment as a name and shame exercise with little chance of ever reaching a trial. The DOJ says that there were extraordinary evidentiary as well as legal hurdles that India found no actionable misconduct and that not a single penny was lost by the investors. It also firmly rejected allegations that the move was linked to investment discussions or any sort of political pressure, insisting that the decision was based solely on the merits of the case. The filing even alleges that unethical leaks from within the department that it says exposed serious flaws in the prosecution. On that note, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: Let's now also take you through more updates coming in from Maharashtra. Well, torrential downpours battered Mumbai, with several parts of the city receiving nearly 200 millimeters of rains in the past 12 hours. Due to heavy rainfall, low-lying areas across the city have now been inundated, triggering road cave-ins, tree falls and even house collapses. This has also disrupted road and rail traffic. Incessant rains also disrupted normal life in neighbouring Thane, Palghar, Navi Mumbai, as well as the Pune region, that witnessed landslides, road closures in waterlogged areas and evacuation of people from flooded localities. Now, the continuous showers coupled with the IMD's warning, the extremely heavy rainfall alert, forced the civic body to declare a holiday for schools and colleges in the area.
1: पूरा हमारा फुटपाथ ड्रेन और यहाँ पे एक फूड का वैन भी था, सबका सब पानी में गया। एक मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे किसी के का मनुष्य आदि नहीं हुए, किसी को कुछ लगा नहीं है।
2: अभी बारिश तो आएगी ना, और बारिश आएगी, लेकिन विषय इतना ही है कि जो बीएमसी है, प्री मानसून का जो मेंटेनेंस किया जाता है, करीबन 300 करोड़ का किया जाता है, अभी उसको अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो पेड़ गिरेंगे, वहाँ पे मैन होल प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा, उसमें लोग गिरेंगे। तो जो मुंबई महानगर पालिका में जो हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन का साइड इफेक्ट है।
3: देखिए, मुंबई में अमूमन जो बरसात होती है, जो मानसून आता है, वो 10-12 जून को आता है, लेकिन इस बार लेट आया था, 23-24 जून के बाद आया। उसके बाद भी महानगर पालिका जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई, ना नाले की सफाई ठीक से हुई, ना पेड़ों की जो कटाई छटाई होती है वो ठीक से हुई, ना तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन आपको दिख रहे हैं, ना तो मतलब एक अनियमितता बरती गई, भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है, उसका जो खामियाजा है वो मुंबई की जनता को उठाना पड़ रहा है।
4: Standing right outside Gandhi Market in the Matunga area, this is the place which usually is the first to suffer after Mumbai experiences torrential and continuous rainfall. But for a change, while the city has been battered by continuous rainfall in the last few days, and especially in the early hours of today morning and afternoon, we can see that there has been no waterlogging in this part of the city. One can clearly see that there is the presence of BMC workers who are continuously making sure that the particular nalas that you see on your screen, these nalas don't get overflown. They're making sure that these nalas are kept clean. And a huge role to play in this is firstly of these BMC workers who've been here since morning. And more important than that, we also have the water pumps that have been put in place by the BMC. As far as this area is concerned, there are 3 water pumps that are in place here, and another 3 in some other lower lying areas on the same road. Now, these pumps are clearly been effective in keeping these areas waterlogging free. But what is also important for us to understand is that the heavy amount of rainfall that the city has experienced, while it may not have caused that much of trouble for the city part of Mumbai, but in the suburban areas, there has surely been some cases of waterlogging which has caused concerns for people.
0: Let's take you through more developments coming in at this hour. Now, the political battle within the Trinamool Congress has now intensified. Rebels have laid claim to the party headquarters, and Mamata Banerjee has vowed to fight back. Launching a blistering counter-attack against the rebel camp, Mamata Banerjee asserted that the party office lease remains valid till 2027 and said that no one can evict the Trinamool or take away its headquarters. She even insisted that the party symbol and flag would remain with her faction and branded the rebels as traitors. The rebel camp, on the other hand, remember, claims that the faction has every right to enter the party office, even argues that the lease has expired. Mamata Banerjee has rejected all of those claims, insisting that the rebels have no legal right over the headquarters, and even maintaining that the lease is valid till 2027. Further, she's also gone on to declare her residence and has said that the residence will serve as the party office if required.
5: Minister, Kokono. ছটা জেলার দায়িত্বে ছিলেন, জেলা পরিষদ, গ্রামসভা, পঞ্চায়েত তৈরিতে সাহায্য করেছেন এবং সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
6: যাহা পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যাহা পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যাহা পর আগর কাম করনা হ্যাঁ তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়া।
7: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था, आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये तालामाला नहीं होता, वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था।
5: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত।

0: News, India Inc's best and brightest.
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी,
1: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील,

0: पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया।
1: चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था, आप देखिए उनका वो तो उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये ताला माला नहीं होता, वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है, ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश होता है, ये प्री प्लान्ड था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था।
2: আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা সরাসরি বিজেপি করছেন, এখন বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা তো হতে পারে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। মনে রাখবেন আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে, আপনারা যারা বেইমানরা গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সর্ড যারা, তারা আমি বলবো যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপি থেকে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবু বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন, বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত ভাবেন কি যে আমি মরে গেছি। মনে রাখবেন আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন, যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয় তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে, গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন?
3: সময় আসা থা দেশ মে রেওয়ার্ড ওয়াপসি কিয়া এক সিলসিলা চলতা ফ্যাশন হো গিয়া থা, জিসকো জো রেওয়ার্ড মিলা থা ও ওয়াপিস কর দিয়ে থে, খুব নাম আতা। আবি টিএমসি মে রিজাইন কা এক সিলসিলা চলা হ্যায়, চলেগা, পার্টি হ্যায় নি, কাহাঁ সে কোন রিজাইন কর রহা হ্যায়, কাহাঁ জা রহা হ্যায়, সময় নি আ রহা হ্যায়, ইয়ে উনকা মামলা হ্যায়, ও সমঝেঙ্গে।
4: Switching tracks now to Uttar Pradesh. The alleged Ram Mandir donation theft case is deepening, with the investigation now expanding on multiple fronts. A key trust meeting is scheduled tomorrow, the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's reported resignation is expected. The SIT is examining the assets, the income sources of these trust officials, probing as far as the alleged commissions in the land deals, scrutinizing the bank procedures, tracking a widening money trail involving high value transactions, alleged, you know, cash transfers and gifts as well. The police are also verifying the accused's claims about the source of the funds, and in the wake of the alleged theft, the temple trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to ensure greater transparency and prevent any recurrence. Meanwhile, we have the issue that has also snowballed into a political battle, with the opposition questioning Yogi Adityanath's government and over the action that's been taken so far. Or should we be saying the lack of it?
5: इसकी मुझे बड़ी पीड़ा है, मन सच्ची आहत हुआ जब सुना कि ऐसा, वो भी भगवान के मंदिर में, जिसे सदियों की साधना के बाद, कितने बलिदानों के बाद बनाया गया, और वहाँ पर वो भी अंदर रहने वाले लोगों ने कर डाला, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तुरंत ही SIT जांच के लिए ऑर्डर दिया, कहा कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और प्रसन्नता है कि 10 दिन के अंदर ही तेजी से जांच हुई और तेजी से जांच में जब जो नाम आए उनको तुरंत जेल में भेज दिया गया और जो दंडात्मक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर पता लगा कुछ और भी बाकी है, ऐसा संदेह बताया जा रहा है, उन्होंने तुरंत 15 दिन की जांच और बढ़ा दी। इसका मतलब वो चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, छोटा हो या बड़ा, कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए, ताकि मुख्य बात है व्यक्ति नहीं बल्कि आस्था, केवल थोड़ा सा धन नहीं बल्कि धर्म, थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बल्कि आस्था, वो नहीं टूटनी चाहिए। लोगों के इतना विश्वास है लोगों को भगवान श्री राम पर, वो नहीं टूटना चाहिए। वो थोड़ा सा विश्वास टूटा कुछ लोगों की वजह से। मुसीबत ये है कि जिन्होंने उन पर विश्वास किया, हमारे आदरणीय चंपत राय जी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, संत हैं, शुद्ध चरित्र के व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया कि विश्वासघात हो गया।
6: पूरा देश मर्माहत है और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
7: Yeah, it's a biggest scandal, and it, I think the Ram is really, you know, there are crores of devotees, and this, you know, the abuse of the religion, you know, to collect money, and you know, the ultimately will result in this. It's a blind following, should not be done.
8: चौकीदारी चोर निकला तो क्या कर सकते हैं भाई? प्राण प्रतिष्ठापन किसने किया? मोदी जी ने। इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने। पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 500 साल का सपना साकार हो, मैंने किया करके बोले। जब चंदा चोरी हुआ तो
9: चीज़ों को अब तक नापाक इरादे रखे, वो आज राम मंदिर से आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा।
10: सर
4: let us now switch tracks when it comes to the fuel, the petrol that we are using in our vehicles and the changes that have been brought about by the central government. Now, the debate over India's E20 fuel rollout has intensified. While the opposition has questioned the government's push for higher ethanol blending and raised concerns over its impact when it comes to consumers and vehicles, leading automobile manufacturers coming out in support of E20, where Maruti Suzuki that strongly defended the use, dismissing concerns over its impact when it comes to vehicles. And the company also has extensively, you know, they have tested this out and they found no excessive wear and tear, corrosion or damage to vehicle components. In fact, Toyota on one side has also backed India's ethanol blending program, describing ethanol as a clean, high-performance fuel that offers good drivability and is even used in Formula One racing. That is the argument that's being made by these automobile companies. Let's listen in.
11: We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. If E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. And it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobile started to roll out, it was ethanol that was used. And another fact is that, you know, its performance is so good that it is used in Formula One racing cars. So the fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, RON element, but it's also clean fuel.
10: We actually had this consultation with our automobile friends, both two-wheelers and four-wheelers. They had explained to us extensive studies carried out across the diving cycle with various vehicles by respected institutions and also their research facilities. They confirmed that in a typical vehicle, you should not be expecting significant reduction in mileage. Now, there are experiences of individuals who seem to have experienced much more than what was being presented by the Automobile Association. These are unique cases which may require fixes of a different type.
12: See, first thing is, mileage is a very subjective thing in this sense. It depends on so many factors, number one. Number two is, it has already been tested at the laboratory level extensively before E20 came into being. And once the laboratory tests have said there will be some minor variations in mileage, other than that, the laboratory has not said. Now it is an individual perception. Somebody may say 10%, somebody may say 2%, somebody may say, you know, it's an individual perception. I think we need to get into scientific explanation more instead of getting into individual perceptions there.
11: We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. If E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern.
13: The vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense element of oversight, and through very technically sound testing agencies which are independent.

अरे ये एडल्ट एडवर्टाइजमेंट है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखते हैं, और ये एडल्ट एडवर्टाइजमेंट वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, 16 साल से छोटे हैं, क्रिकेट देश में धर्म की तरह माना जाता है। जब मैं देख रहा था तो उस समय 44 करोड़ लोग देख रहे थे, और उसमें एक एडल्ट एडवर्टाइजमेंट आ जाना, माँ बाप को समझ नहीं आता कहाँ देखें, बच्चे उसको समझते नहीं, पूछते हैं क्या है, क्या प्रभाव डालेगा किसी के भी मस्तिष्क में, यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

0: Launching that blistering counterattack against the rebel camp, Mamata Banerjee asserted that the party office lease is valid till next year, till 2027, and said no one can evict the TMC or take away its headquarters. She insisted the party symbol and the flag will remain with her faction, and that is branding the rebels as traitors. Rebel camp claims that the faction has, you know, every right to enter the party office, arguing that the lease has not expired. But Mamata Banerjee has rejected those claims outrightly, insisting that the rebels have no legal right when it comes to the headquarters of the TMC, maintaining the lease is valid till 2027, declaring that her residence can also serve as a party office if that is what is required.
1: Education Minister, kokhono chota jela daitte chilen, jela porishad, gram sabha, panchayat toirite sahajjo korechen. এবং সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন। আমি কিন্তু সবটাই জানি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো।
2: যহাঁ পর বিশ্বাস নেই হ্যাঁ, যহাঁ পর কনফিডেন্স নেই হ্যাঁ, যহাঁ পর আগর কাম করনা হ্যায় তো ও কাম ঠিক সে নেই হো পাতা, ইসলিয়ে হমনে ও ইয়ে রেজিগনেশন দিয়া।
3: एक समय ऐसा था देश में रेवाड़ वापसी का एक सिलसिला चल था, फैशन हो गया था, जिसको जो रेवाड़ मिला था वो वापिस कर दिए थे, खूब नाम आता। अभी टीएमसी में रिजाइन का एक सिलसिला चला है, चलेगा, पार्टी है ही नहीं तो कहाँ से कौन रिजाइन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये उनका मामला है, वो समझेंगे।
4: देखिए, कंपनी जब बंद होता है तो कर्मचारी एक एक करके चले जाते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। तो तृणमूल नाम का जो कंपनी है ये तो बंद हो चुका है, इसमें ताला लग चुका है, सिर्फ बुआ और भतीजा रहेगा कालीघाट तृणमूल में, और बाकी सब अपना अपना, देखिए अपना अपना भविष्य, अपना अपना पॉलिटिकल करियर सबको पसंद है और सबको मालूम है। लेकिन चंद्रिमा देवी से इतना दरख्वास्त है कि अगर आपको मालूम था कि ममता बैनर्जी आपको बजट पढ़ने नहीं देती थी, बनाने नहीं देती थी, अगर आपको मालूम था इतना घोटाले है, पहले क्यों नहीं बताए। तो एनीवेज, देखिए इंसान को तो अच्छा जो विवेक है जागरूक होने में थोड़ा सा शायद उनको वक्त लगा होगा, देर आए दुरुस्त आए।
0: Now, in a significant legal development, the U.S. Department of Justice has filed a detailed defense of its decision to seek dismissal of the securities fraud case against the Adani Group. The filing argues that these are the charges that should never have been brought, describing the indictment as a name and shame exercise with little chance of ever reaching trial. The DOJ has said that they were extraordinary evidentiary and legal hurdles, that India found no actionable misconduct, and that not a single penny was lost by investors. It also firmly rejects allegations that the move was linked to investment discussions or political pressure, insisting the decision was based solely on the merits of the case. The filing even alleges unethical leaks from within the department that it says exposes serious flaws in the prosecution. Now let's just switch tracks, and we are talking about a film that spent nearly 4 years caught in a censorship battle is finally out. We're calling this movie Diljit Dosanjh Must Delayed Punjab 95, that's released on a streaming platform but under a new title. The new name is Satluj. The makers insist only the name has changed, not a single frame of the film has been changed. Here are the details.
5: Punjab. जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
6: After years of uncertainty, legal hurdles and censorship controversy, Diljit Dosanjh star as Satluj is finally streaming.
7: ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है, मैं पीछे नहीं हट सकता।
6: The film was originally titled Punjab 95. But was renamed before release after a prolonged battle with the Central Board of Film Certification.
5: Insurgency, Black Thunder, President Rule se leke CM ke assassination tak aur aap.
6: Set in Punjab in 1995, the film is inspired by the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra. Diljit plays Khalra, a bank employee from Tarantaran, whose search for a missing person uncovers allegations of thousands of illegal killings and secret cremations during Punjab's militancy era.

मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे गांव का नाम है दुन्ने के। ये पंजाब में एक ज़िला है मोगा, वहाँ पे छोटा सा गांव है दुन्ने के। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है यहीं से, अपने गांव से। टेंथ तक पढ़ाई की है यहाँ पे, फिर मैंने ट्वेल्थ की है लाइक मोगा में जाके कहीं, उसके बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज चल रहा है। मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई है छोटे, एक बहन है बड़ी, एक मैं हूँ। पापा मेरे लेबर करते हैं, मम्मा भी करते हैं किसी के घर में काम। मैं इसी गली में बड़ी हुई हूँ, यहीं पे खेलती थी मैं पूरा टाइम। डायरी दे वरिक्या उत्ते।

0: बचपन से मतलब इसको शौक ही था गाने का जी। चौथी साल में वो गाना थोड़ा सा लग गया था गाने के लिए।
1: मेरा स्कूल फ्रेंड था तो वो उसने लाइक एक पेज बनाया था तो मैंने उसको देखा। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था जो बहुत अच्छा सिंगर भी है, राइटर भी है, ही इज़ वेरी गुड। तो मेरे को लगा कि यार इसको भी करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू जा वहाँ पे, तू कर, तो हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि मैं जानती थी उसको, वो नहीं जानता था। तो हम गए वहाँ पर, उसने किया। तो जो मेरा स्कूल फ्रेंड था जिसका वो पेज था, उसने बोला कि यहाँ इस पर कोई लड़की भी करती है ना आप में से, तो इन्होंने बोला कि ये कर लेती थोड़ा बहुत। तो पहले तो मैं नर्वस थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने गा दिया। तो आई डोंट नो हाउ, पर वो रील काफ़ी वायरल हुई। वो एक मैंने बनाया था एक पंजाबी और थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके। You're the one, I'll let it never be alone. You're the

0: लाइक जब रील वायरल हुआ तो है ना, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि मेरे को तो ऐसा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने तो अपना फ़ोन देखा भी नहीं था, ऐसे डाल दिए थे लाइक नॉर्मल। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो बैक मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई देख तेरी रील वायरल हुई। मैं क्या अच्छा, तो उसके बाद DMs आए है ना, काफ़ी आर्टिस्ट ने लाइक लोगों ने अप्रोच किया। बेसिकली मैंने सोचा ही था कि मेरे को तो जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कुछ तो मेरे से होगा नहीं, टीचिंग ही कर लूंगी मैं, यही सोचा था।
1: की पता नहीं तेरे च देखिया
0: रैपिंग और सिंगिंग की शुरुआत बस दोस्तों को देख के साथ में करते थे, तो सोचा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए।
1: और जितना तेरे च सजना कोई है मैं तानी फील ले गया मारी सहन तो तू ऐसी अपना।
0: जो कॉलेजेस में होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया लाइक उस वहीं से। मेनली जब यूथ फेस्टिवल हुआ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मैं जीत गई थी तो हाँ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, लाइक मेरे टीचर्स ने भी बोला कि यू शुड ट्राई है ना, तुम अच्छा गाती हो। तो उसके पहले मैं लिखती नहीं थी, मैं गाती ही थी।
2: वे जा तेरे वस दी ना गल, मेरे रूट छड़ दे ते किसे होर दारा मल, सिद्धी तीर वर्गियां पुठी जरा ना मैं गल, हाथ अज भी ना आवा ना ही होना तेरे कल।

0: तो आज हम लंच में खाएंगे आलू के पराठे।
1: चलो
0: चलेंगे। आज खाने में है अचार, चटनी और पराठे और दही। लासी छाछ नहीं है ब्रो ये।
2: साइफर हम करते हैं ना, तो ये सिर्फ यही लड़की थी जो साइफर पे गाती थी। इसके बाद काफी लड़कियों ने बोला कि हम भी गाएंगे या हम भी करेंगे। कईयों के तो साथ घर वाले भी साथ देने लगे।
0: तो काफी अच्छा लगता है कि मैं इंडिया को एज अ फीमेल रैपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ या फिर कर पा सकूंगी आगे, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ बाकी सब वाहेगुरु पे।

0: जब लोग मुझे सिद्धू मूसेवाला जी से रिलेट करते तो आई फील वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ लेके आपको जोड़ रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत, एक तो पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मेरे को उनके साथ जोड़ना, इज लाइक प्राउड फील, लाइक नाउ प्राउड नहीं, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, प्रेशर भी लगता है और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही थे, उनके जैसा कोई है नहीं अभी तक, ना ही कोई होगा, या तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है बहुत।
1: दिल बस तेनू पाले रातां जो जाग के कटियां होंदी।
0: मैं तो डेली 10-15 बार इंस्पायर होती हूँ, यहाँ से कोई निकल गया चलते मैं तो उससे इंस्पायर हो जाऊंगी, ऐसे सबसे ज्यादा इनके पास हंसती हूँ, पता नहीं क्यों। जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपको एक गाने को जो देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले हम देखते थे गाना बस वाइब करने के लिए, ठीक है ठीक, अब देखते हैं भाई ये आए तो वो बहुत लाइक बहुत ध्यान देने लग गए उन चीजों पे।
2: असि तेनू पहला ही क्या सी कि तू भी गा,
0: हाँ
2: ये बोल रही थी, मैं नहीं गाऊंगी, छोड़ो मैं नहीं गाऊंगी,
0: मैं क्या करूंगी,
2: इसको धक्के से गवाया था,
0: धक्के से लाइक जबरदस्ती, कैसे थोड़ी सी जबरदस्ती की तो फिर मैंने गाया।

0: उसके अगली बार फिर जब साइफर हुआ तो हम कल पिक देख रहे थे वो केक वाली।
1: हाँ कल देख रहे थे हम। हाँ,
0: एक साल हो गया उसको, कल एक साल हो गया
1: उसको। मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास है
0: सुखे ने ऊपर जियो स्नैप।
1: ये हमारा जब 1 मिलियन हुआ था रील पे तो मैंने केक काटा
2: इसकी खुशी ज्यादा हुई थी।
1: इसकी तो बहुत थी,
0: इसकी खुशी ज्यादा थी क्योंकि वो सभी ने पैसे जोड़ जोड़ के केक लेके आए थे।
1: हाँ, सब ने लाइक इन्वेस्ट किया था वो छोटे से केक। चलो चलो कॉलेज चलिए,
0: चलो चलते हैं।

मैडम बनना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की लाइक वो थी और डिसीजन लेने की आप में थोड़ा गट्स वॉल, लाइक आपको डिसीजंस लेना पड़ता है, मेरे को भी पड़ा था लाइक बहुत से, जब आप इस उम्र में होते हो यू नो किसी भी लाइक फील्ड में जाने के लिए या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत से ऑप्शन होते हैं पर आपको सही चूज़ करना बहुत, कई बार लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर मैं अब गाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती, कभी बोलती नहीं कॉलेज में, मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जो मुझे मोटिवेट करते, तो लाइक दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स, मुझे तो मेरे लिए तो यही प्राउड मोमेंट होता है जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से बाहर जाना है, तब मेरे को कोई कुछ पूछता नहीं है वापस से कि भाई कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, तो मैं इनके साथ ही, वही तभी वही अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब फ्रीडम है। अब पहले थी रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो हाँ वो अभी थोड़ा फ्रीडम है, खुद चूज़ करने का फ्रीडम है, यू कैन चूज़ एनी थिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। पहले घर वाले थे कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है।

मेरे को तब लगा कि मुझे लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, जब मैंने एक ही दिन में मेरे को किसी बच्चे ने भी बोला दीदी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, उसी दिन मेरे को एक ओल्ड लेडी ने भी बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे छोटे हमें सुन रहे हैं, हमसे इतने बड़े भी सुन रहे हैं, सिटीजन्स लाइक सीनियर सिटीजन्स भी सुनते हैं, तो तब लगा मेरे को भी यहाँ मेरे को थोड़े लोग सुन रहे हैं।

0: ये है राजवीर मेरी सहेली, मुंह देख लो इसका।
1: मेरे नमस्ते भी कर
0: रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम गुरदत्त है। रखे पात शाह देखदा है सच्चे पातशाह।

0: सो अब हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक यहां पे हमारा थिएटर का थिएटर की चीज हो चीजें होती हैं।
1: तू कहना नहीं क्लासिकल नहीं है तो
0: तू तो ये हमारा स्टेज है, यहां पे हम बैठते हैं, विश्वनी क्लासिकल गाते हैं, लोग तब नाचते भी हैं। ये हमारे सारे साथी हैं।
2: सही कहा है।

0: Here, besides that, we also have several protesters. We've got political representatives from different parties protesting here. We will not be entering the crowd right now because she's currently taking, trying to understand from the BMC officials on what exactly the matter was. But a bigger point remains, when we spoke to the officials here, we understood that the BMC was quite late to respond on this particular occasion. If you look at this entire street, it's a very narrow street, right? And there are several vehicles parked here, but the locals state that the BMC was very late to respond, as a result of which it caused even more confusion amongst the locals here. As I said earlier, there are several MNS workers who are also present here to protest. We spoke to them a while back. We'll again like to go back to them. Mr. Bhanushali, aap yahan pe maujood ho protest karne ke liye, pehle to aapki maang kya rahegi, aur dusri baat, Mumbai mein pichle 3 se 4 dino mein kafi sare logo ki jaan chalegi, uske upar aap kya kahoge?
1: देखिए, जिस तरह से जाने जा रही है, प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और कॉन्ट्रैक्टर, ये सब लोगों की लापरवाही की वजह से आज मुंबई घर को ये दिन देखना पड़ रहा है। और उसमें से भी मेरे चांदीवली की जनता के दुर्भाग्य है कि दूसरी मौत मेरे चांदीवली विधानसभा में हुई है। जाड़ की टहनी गिरी, लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेके गए, कॉन्ट्रैक्टर आया, जाड़ के टहनियाँ काट के साइड पर रख के निकल गया, किसी को पता न चले, इस मैटर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। 4 घंटे हो गए यहाँ पर, कोई अधिकारी आया ना कोई लोक प्रतिनिधि आया, इसका मतलब पूरी तरह से इस मैटर को आप दबाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि एक तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा, इस बार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई ना होते, जो सत्ताधारी लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके राजीनामे देने चाहिए।
0: That is a very important thing that he is saying, because if you look at the boards that they're carrying, they have clearly mentioned that the officials, that is the adhikari, shouldn't be suspended this time, but it is the mahapaur and the upamahapaur, that is the mayor and the deputy mayor, against whom an action should be taken. And as they protest, it goes parallel to the mayor of the city, Ritu Tawade, also paying a visit to this place. We know, as we've been talking about it earlier as well, such instances have been happening continuously for the last 4 or 5 days, and we've also seen suspension of close to 7 officials from the BMC earlier as well. But is the question really about the officials, or is it about the mayors or the public representatives who need to be who need to be held accountable?
2: Right, Anujan, you were pointing out about Ritu Tawade, the Mumbai mayor, being there on the spot, but Anuj, we saw visuals yesterday of the Mumbai mayor going to Marine Drive, telling people to be cautious and moving out from that area. But this is actually where she needs to be there. She needs to be where the problem is. It's said the residents have already raised issues of how there are age-old trees that need to be cut short, that need to be cut down in order to ensure public safety. But the mayor's arrival coming nearly 3 to 4 hours late after a man has already lost his life, that's where the accountability lies, and that's where the people are asking questions. Anuj, if you can just take us through what action has the BMC taken over the rising cases of the tree collapse has taken place, because clearly it seems that no lesson has been learned after the 11-year-old Vihan lost his life.
0: That's a very crucial question, and also before getting into the answer, I'd just like to show you the fact that the leader of opposition of BMC is present here, the mayor is addressing the press there, and we also have protesters. But what remains to be seen is that there is no real justice or no real accountability beyond what is there on paper. When the unfortunate chamber incident happened, the mayor, while speaking exclusively to NDTV, made it very clear that the audit of the trees will be done. I have Kishori Thai Pednekar, who's the leader of opposition in BMC. Mayor ne kaha tha ki जो पेड़ है उनके ऑडिट किए जाएंगे, और वो कहने के बाद 2 और जाने जा चुकी है।
3: बिहार लास्ट 5 साल महापालिका में नहीं थी, लास्ट 4 साल प्रशासक था, इसका मतलब है 9 साल उनका तजुर्बा कम है। अशरफ आज आजमी अशरफ आज मेरे साथ है, कांग्रेस के मैं हूँ, मनसे के लीडर है, नगर सेवक भी कुछ है। तो मुझे लगता है जिन्होंने 9 साल काम किए, तो 227 में नगर सेवक में बहुत नगर सेवक थे। हम चाहते थे विशेष सभा लगाओ, हम चाहते थे महापौर के हम कान नाक डोले, जो आँख है वो हम बोल के उनको हम बता सकते हैं 9 साल में क्या हुआ है, लेकिन सुनने को ही तैयार नहीं। राणा भीमा देवी का आवेश लेके होता नहीं है।
0: कल मरीन ड्राइव पे जाके लोगों को कहा कि आप दूर खड़े रहे, बट लोगों का कहना है कि ऐसी जगहों पे उनका होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
3: अब ये आप ही बोल रहे हैं, और उसके बाद 4, 4:30 बजे जब मैं उधर से जा रही थी, पूरी चौपाटी भरी हुई थी, ये एक बाजू में ये कहते हैं बारिश में एंजॉय करो, तो जिम्मेदारी लेके लोगों को एंजॉय करने दे दो.
0: That is an important point raised by the leader of opposition of BMC, Kishorita Pednekar. Back to the studio.
2: Absolutely, Anuj. Thank you very much for getting us those details. Stay safe, because what we're seeing right now is civic failure and not monsoon apathy that's claimed many lives. Remains to be seen on what action is to be taken. And on to the other stories that we are tracking. Political temperatures have continued to rise over the alleged Ram temple donation theft. The opposition leaders have leveled sharp allegations over thefts that are linked to the temple allegedly. Meanwhile, the investigation is also widening on multiple fronts, with the SIT that is tracking a widening money trail involving high-value transactions worth over rupees 15 lakh rupees. This is over the alleged cash transfers and the other gifts. Now, following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols. They have enhanced the CCTV surveillance and have also tightened the operating procedures to improve transparency in the system. However, on the other hand, what we see is that a key trust meeting is all scheduled to take place in Ayodhya, and this is going to be held tomorrow. This is the meeting where decision on the General Secretary Champat Rai and Anand Mishra's reported resignation is expected and will be decided upon on what is to be done on their resignation. Political reactions coming in on that story. Let's take a look.
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं. सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के. क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई. एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है.
6: पूरा देश मर्माहत है और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं. जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे. और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं.
7: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है. तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं. सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है.
8: जब चौकीदारी चोर निकला तो क्या कर सकते हैं भाई. प्राण प्रतिष्ठापन किसने किया? मोदी जी ने. इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने. पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 500 साल का सपना साकार हो, मैंने किया करके बोले. जब चंदा चोरी हुआ तो
9: चीज़ों को अब तक नापाक इरादे रखे वो आज राम मंदिर के आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा
2: सर. Meanwhile, the Vishwa Hindu Parishad has hit back at the opposition, demanding a thorough examination of its claim. And it has also urged the authorities to take action if those allegations are found to be false.
10: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी. प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है. हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं. प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है. अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में

0: बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
1: And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue here on NDTV.

0: And now moving on to the other big stories that we're tracking. Political temperatures have continued to rise over the alleged Ram Temple donation theft. Opposition leaders have leveled serious allegations over thefts that are linked to the temple allegedly. Meanwhile, the investigation is widening on multiple fronts. The SIT is tracking a widening money trail involving high-value transactions. Over rupees 15 lakhs alleged cash transfers and gifts have also taken place, is what we learn. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced strict donation counting protocols. They have enhanced the CCTV surveillance and also tightened the operating procedures to improve transparency on many levels. On the other hand, what we're also seeing is that a key trust meeting is scheduled to take place. That is tomorrow on this July 6th in Ayodhya, where a decision on Champat Raya and Anil Mishra's resignation will formally take place. Lots of political reactions coming in on that story.
1: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं. सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के. क्या आपका जवाब?
2: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई. एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे. तो यही बात हो रही है.
3: पूरा देश मर्माहत है और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं. जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे. और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं.
4: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है. तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं. सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है.
5: चीज़ों को अब तक नापाक इरादे रखे वो आज राम मंदिर से आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा
1: सर.
0: Meanwhile, what other developments have also taken place in this case is that the Vishwa Hindu Parishad has hit back at the opposition, demanding a thorough examination of its claims and even urging authorities to take action if those allegations are found to be false.
6: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी. प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं. प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है. अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे.
1: इमरान साहब, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में एक ताज़ा अपडेट यह है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने पत्र लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जांच अधिकारी को, और मांग की है कि ये प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव जैसे नेता जिन्होंने दावे किए हैं कि 20,000 करोड़ की चोरी हो गई, बड़े बड़े जो दावे किए हैं चोरी को लेकर, इन सबको समन किया जाए, बुलाया जाए और पूछताछ की जाए कि ये किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं.
7: SIT किसने बनाई? क्या प्रियंका जी के और इन तमाम नेताओं के बयान पर बनी है SIT? SIT किसने बनाई? FIR किसने कराई? तो जिन्होंने FIR कराई, सबसे पहले तो सवाल उनके लिए है ना. ये इल्ज़ाम, चोरी का इल्ज़ाम किसने का? ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बयान दिया कि चोरी नहीं, डकैती है, तो ये तो उन्होंने कहा. तभी तो लोगों के सामने आया।
0: All right, moving on, in a significant legal development, the United States Department of Justice has filed a detailed defense of its decision to seek dismissal of the securities fraud case against the Adani Group. The filing argues that charges should never have been brought in the first place, describing the indictment as a name and shame exercise with little chance of ever reaching the trial. The DOJ has said that there were extraordinary evidentiary and legal hurdles that India found no actionable misconduct and that not a single penny was lost by investors. It also firmly rejects allegations that the move was linked to investment discussions or even political pressure, insisting that the decision was based solely on the merits of the case. The filing even alleges unethical leaks from within the department that it says exposed serious flaws in the prosecution.
8: That's right. In fact, Department of Justice has strongly defended the decision to abandon the case against the Adani Group, saying that it was diplomatically counterproductive and the case was legally flawed. In fact, in a 10-page note submitted before a U.S. court, the Department of Justice has cited six specific reasons why it has decided to abandon the case against Adani Group. First, of course, is the reason that the alleged conduct was overwhelmingly centered in India, and the Indian authorities had investigated this case. I think this is an important point. An investigation was done by Indian authorities, and no evidence of any misconduct was found in India during this case. And this has been cited in the U.S. court by Department of Justice while deciding to abandon the case against Adani Group. And it has also said that investors suffered no financial losses. This case was diplomatically counterproductive for the United States, and has also said that it was not consistent with Trump administration's enforcement priorities. So very strong legal reasons have been submitted by the Department of Justice in a 10-page note before a U.S. federal judge who was hearing this case, strongly defending the decision to take back all charges against Adani Group.
0: With that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आर प्योर।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
3: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
4: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
5: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
6: It's also important that how they are reshaping the industries.
7: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
2: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
2: NDTV tops the Reuters Institute India Reach Rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
13: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried.
14: Welcome back. A historic milestone in the defense sector was marked with the foundation stone laying of Adani Defense and Aerospace Missile and Propellant Manufacturing Facility. Adani Airport Holdings Limited Director Jeet Adani, Chief Minister Mohan Yadav, Union Minister Jyotiraditya Sindhya and other members of the Adani Group participated in the ceremony. The project is set to become South Asia's largest private missile ecosystem, strengthening India's self-reliance in defense manufacturing.
15: आज हम साउथ एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी फैसिलिटी है जहां नेशनल डिफेंस की रॉ मटेरियल और पूरी तरह से तैयार मिशन रेडी मिसाइल्स एक ही जगह बनाई जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट की अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स के बाहर। वी आर डीपली ऑनर्ड टू ब्रिंग दिस सॉवरेन कैपेबिलिटी टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब हमारे देश के सबसे पावरफुल ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन चुका है। जो मोमेंटम हम आज अभी देख रहे हैं, वह चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी और यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लगातार सपोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस का रिजल्ट है। अदानी ग्रुप कि इस जर्नी का हिस्सा होने पर बहुत गर्व है।
16: अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, एक एक पसीने का बूंद। जहां मेरी शिवपुरी की जनता का मैंने कहा है एक पसीने का बूंद टपकेगा वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी तो आपके लिए हाजिर है। शिवपुरी में 2500 करोड़ की मिसाइल की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री, गोले की फैक्ट्री शिवपुरी में आज लगने जा रही है तालियों की गड़गड़ाहट से।
0: अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है, आप बताओ जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के घर और उनके परिवार सहित दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से, ये सपना भी साकार हो रहा है। और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब ये यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा, लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु।

मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे गांव, मेरे गांव का नाम है दुन्ने के। ये पंजाब में एक ज़िला है मोगा, वहाँ पे छोटा सा गांव है दुन्ने के। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है यहीं से, अपने गांव से। टेंथ तक पढ़ाई की है यहाँ पे, फिर मैंने ट्वेल्थ की है लाइक मोगा में जाके, लाइक कहीं उसके बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज चल रहा है। मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई है छोटे, एक बहन है बड़ी, एक मैं हूँ। पापा मेरे लेबर करते हैं, मम्मा भी करते हैं किसी के घर में काम। मैं इसी गली में बड़ी हुई हूँ, यहीं पे खेलती थी मैं पूरा टाइम। डायरी दे वरिक्या उत्ते।

जब रील वायरल हुआ तो है ना, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि मेरे को तो ऐसे था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है।

0: आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने तो अपना फ़ोन देखा भी नहीं था, ऐसे डाल दिए थे लाइक नॉर्मल। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो बैक मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई देख तेरी रील वायरल हुई। मैं क्या अच्छा, तो उसके बाद DMs आए है ना, काफ़ी आर्टिस्ट ने लाइक लोगों ने अप्रोच किया। बेसिकली मैंने सोचा ही था कि मेरे को तो जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कुछ तो मेरे से होगा नहीं, टीचिंग ही कर लूंगी मैं, यही सोचा था।
1: की पता नहीं तेरे च देखिया
0: रैपिंग और सिंगिंग की शुरुआत बस दोस्तों को देख के साथ में करते थे, तो सोचा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए।
1: और जितना तेरे च सजना कोई है मैं तानी फील ले गया मारी सहन तू तू ऐसी अपना।
0: जो कॉलेजेस में होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया लाइक उस वहीं से। मेनली जब यूथ फेस्टिवल हुआ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मैं जीत गई थी। तो हाँ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, लाइक मेरे टीचर्स ने भी बोला कि यू शुड ट्राई है ना, तुम अच्छा गाती हो। तो उसके पहले मैं लिखती नहीं थी, मैं गाती ही थी।
2: वे जा तेरे वस दी ना गल, मेरे रूट छड़ दे ते किसे होर दारा मल, सिद्धी तीर वर्गियां पुठी जरा ना मैं गल, हाथ अज भी ना आवा ना ही होना तेरे कल।

0: सफाई नहीं करती है, पैर पैरों लेके आगे अंदर दूजे
1: मुंडे हुड विच।
2: ये है मेरे दोस्त, इसका नाम है साहब, इसका नाम है शन्नू। तो कैमरा ऊपर है, ऊपर देखो। दोनों ही बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको मिली। तो इसी वजह से साथ में है कह सकते हैं। ये स्कूल में था और ये कॉलेज में था। अपने मेरा डायरी गाना तो सुना होगा है ना, तो ये इन्होंने लिखा था।
3: लिखने की वजह है बस डायरी थी हाथ में
0: और सैड के हाल चल रहे
2: थे, सैड के
0: हाल चल रहे थे।
3: सोचा कि कुछ लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उसकी फीलिंग्स देखी जाए। जैमिंग करते करते वो गुनगुनाया गाना, वो टीम को अच्छा लगा और तब वो देखा कि चलो इसको दे देते हैं,
2: इसको दे देते हैं,
3: हमने कर लिया,
2: इसने कर लिए, एक ही बात है।
3: डायरी दे वर क्या उते हंजुआ नाले लिख दिया वे, तू क्या सी हंस दी रा कर हंसना ही सिख दिया वे, पर मेरे हंसे तुर गए तेरे ही नाल वे
2: फरिश्ते आवाज।

0: आज हम लंच में खाएंगे आलू के पराठे।
1: आज खाने में है अचार, चटनी और पराठे और दही। लासी छाछ नहीं है ब्रो ये।
2: साइफर हम करते थे ना, तो ये सिर्फ यही लड़की थी जो साइफर पे गाती थी। इसके बाद काफी लड़कियों ने बोला कि हम भी गाएंगे या हम भी करेंगे। कई कईयों के तो साथ घर वाले भी साथ देने लगे।
0: तो काफी अच्छा लगता है कि मैं इंडिया को एज अ फीमेल रैपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ या फिर कर पा सकूँगी आगे, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ बाकी सब वाहेगुरु पे।

0: जब लोग मुझे सिद्धू मूसेवाला जैसे रिलेट करते तो आई फील वेरी मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ लेके आपको जोड़ रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत, एक तो पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मेरे को उनके साथ जोड़ना, इज लाइक प्राउड फील, लाइक नाउ प्राउड नहीं बट बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, प्रेशर भी लगता है और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही थे, उनके जैसा कोई है नहीं अभी तक, ना ही कोई होगा, या तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है बहुत।
1: दिल बस तेनू पाले रातां जो जाग के कटियां आयोंदी।
0: मैं तो डेली 10-15 बार इंस्पायर होती हूँ, यहाँ से कोई निकल गया चलते मैं तो उससे इंस्पायर हो जाऊंगी, ऐसे सबसे ज्यादा इनके पास हंसती हूँ पता नहीं क्यों। जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपको एक गाने को जो देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले हम देखते थे गाना बस वाइब करने के लिए, ठीक है ठीक, अब देखते हैं भाई ये आए तो वो बहुत लाइक बहुत ध्यान देने लग गए उन चीजों पे।
2: असी तेनु पहला ही क्या सी कि तू भी गा,
0: हाँ
2: ये बोल रही थी, मैं नहीं गाऊंगी, छोड़ो मैं नहीं गाऊंगी,
0: मैं क्या करूंगी,
2: इसको धक्के से गवाया था,
0: धक्के से लाइक जबरदस्ती, कैसे थोड़ी सी जबरदस्ती की तो फिर मैंने गाया।

0: उसके अगली बार फिर जब साइफर हुआ तो हम कल पिक देख रहे थे वो केक वाली।
1: हाँ कल देख रहे थे हम। हाँ, हाँ,
0: एक साल हो गया उसको, कल एक साल हो गया उसको।
1: मैं दिखाऊँ आपको, मेरे पास है।
0: सुखे ने वो भेजी हुई स्नैप।
1: ये हमारा फिर जब 1 मिलियन हुआ था रील पे तो केक काटा था।
2: इसकी खुशी ज्यादा हुई
1: तो बहुत थी।
0: इसकी खुशी ज्यादा थी क्योंकि वो सभी ने पैसे जोड़ जोड़ के केक लेके आए थे।
1: सब ने लाइक इन्वेस्ट किया था वो छोटे से केक। चलो चलो कॉलेज चलिए,
0: चलो चलते हैं भाई।

परम बनना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की लाइक वो थी और डिसीजन लेने की आप में थोड़ा गट्स और लाइक आपको डिसीजन लेना पड़ता है, मेरे को भी पड़ा था लाइक बहुत से, जब आप इस उम्र में होते हो यू नो किसी भी लाइक फील्ड में जाने के लिए या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत से ऑप्शन होते हैं पर आपको सही चूज़ करना बहुत, कई बार लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर मैं अब गाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती, कभी बोलती नहीं कॉलेज में, मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जो मुझे मोटिवेट करते, तो लाइक दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स, मुझे तो मेरे लिए तो यही प्राउड मोमेंट होता है जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से बाहर जाना है, तब मेरे को कोई कुछ पूछता नहीं है वापस से कि भाई कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, तो मैं इनके साथ ही, वही तभी वही अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब फ्रीडम है। अब पहले थी रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो हाँ वो अभी थोड़ा फ्रीडम है, खुद चूज़ करने का फ्रीडम है, और यू कैन चूज़ एनी थिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। पहले घर वाले थे कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है।

मेरे को तब लगा कि मुझे लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, जब मैंने एक ही दिन में मेरे को किसी बच्चे ने भी बोला दीदी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, उसी दिन मेरे को एक ओल्ड लेडी ने भी बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे छोटे हमें सुन रहे हैं, हमसे इतने बड़े भी सुन रहे हैं, सिटीजन्स लाइक सीनियर सिटीजन्स भी सुनते हैं, तो तब लगा मेरे को भी हाँ मेरे को थोड़े लोग सुन रहे हैं।

0: ये है राजवीर मेरी सहेली, मुंह देख लो इसका।
1: मेरे नमस्ते भी करते
0: हैं। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम गुरदत्त है। देखदा है सच्चे पातशाह।

0: सो अब हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक यहां पे हमारा थिएटर का थिएटर की चीज हो चीजें होती हैं।
1: तू कहना क्लासिकल नहीं है, जो तू
0: तो ये हमारा स्टेज है, आप हम बैठते हैं क्लासिकल गाते हैं, कभी कभार नाचते भी हैं। ये हमारे सारे साथी हैं।
2: सही है।

0: आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील.
1: Once again, the entire controversy around the Ram temple donation theft, the politics around it continues. Various opposition leaders have questioned the ruling government, the BJP, about the handling of the funds. The UP government has set up a special SIT to look into these irregularities. The authorities and the temple trust has assured the devotees that all the belongings are safe. But how far this nexus runs, how long has it been going on, is a key issue. And one of the key things that Ram Mandir has been such an emotive issue for the entire country, the opposition is likely to rake up this issue. We have heard Akhilesh Yadav talking about this. Now we have Shiv Sena, one of the key parties which has been a proponent of the Ram Mandir ever since the demolition happened in 1993 of the Babri Masjid. Another important story. Speaking in Lucknow, BJP National President Nitin Naveen launched a sharp attack on opposition over the Ayodhya Ram Temple issue. He accused opposition leaders of questioning the existence of Lord Ram and Ram Setu in the past and referred to the firing on Kar Sevaks to allege that the same parties were now attempting to speak for Hindu faith. Naveen asserted that BJP would not allow anyone to play with the faith associated with Ram Mandir and said that the party was prepared to make any sacrifice to protect it. Naming Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and AAP convener Arvind Kejriwal alleged that anti-Hindu forces were trying to derive political mileage from the issue, claimed that Hindus would not be misled by what he described as mere political tactics. Let's listen in to what Nitin Naveen, the BJP president, said.
2: चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो. आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं. मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा. मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. अरे, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर उसके रूप में सामने हमें दिखता है. मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता. इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम तेरे बेटे. हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी. मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे. हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे. मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा. हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। दो दो महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे? अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछताप नहीं कर सकता है। मित्रों, आपने तो खून की नदियां बहाई हैं, आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं की आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है। मित्रों, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे। मित्रों, आज के दिन मैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के शंखनाद के रूप में आया था, चुनाव के तैयारी के लिए आया था। मुझे को देखने को मिला कि जिस प्रकार से लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ एक अलग ही वातावरण में मुझे मिलने पहुंचे, तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि उसे ऐसे विपक्षियों को जवाब भी मिलेगा।
1: Well, that was BJP President Nitin Naveen making a statement. Let me cut across to my colleague Ranveer Singh. He's with us on the broadcast. Ranveer, a very sharp jibe and attack on the opposition parties by the BJP President.
3: Yes, Nitin Naveen, who is in Lucknow, and this is day two of his first visit to Lucknow for the preparation of election campaign. And Nitin Naveen, while addressing the BJP members, he attacked the opposition, saying that they insulted Sanatan and now they are speaking on the issues of Sanatan Dharma. So Nitin Naveen, the chief of the BJP, he hit out at the opposition, especially Congress, Samajwadi Party, as well as Aam Aadmi Party chief Kejriwal, and he clearly said that the opposition, they remain silent when Sanatani were exploited, but now they are speaking over the Sanatan Dharma. So this is a clear jibe on the opposition by the BJP chief. And now BJP is in campaign mode. So Nitin Naveen, who met CM Yogi Adityanath, as well as MPs, MLAs, ministers and party office bearers, to decide the line of action in the coming months, because next year, in the beginning, UP will witness election. So Nitin Naveen is all set to prepare for the election, and obviously he is trying to hit out the opposition over Sanatan Dharma.
1: We're forgetting us all those details. We'll of course keep coming back to you for more. And the politics around Ram Temple is far from over. Shifting our focus, Kylian Mbappe's penalty-led France passed Paraguay in the bruising World Cup clash played in record. Paraguay frustrated France in an ugly contest that was played out under extreme heat warning. This is set to go down as one of the hottest matches in the tournament history. The heat rose in the middle too, as the Paraguayans were accused of using dirty tactics, sometimes praised, sometimes bruising. A 1-0 win takes France to their Boston quarterfinal against Morocco on Thursday.
4: A baking day at Lincoln Financial Field in Philadelphia. In the middle was a bad-tempered match between France and Paraguay.
5: On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay, c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
4: Andreas Kubas escaped a booking after clattering into Adrien Rabiot. Juan José Casares kicked out at Kylian Mbappe. That went unpunished too. Astonishingly, while Le Blue players Manu Kone, Bradley Barcola and Michael Aulis were all cautioned, not a single Paraguay player was booked. France won, but they were left fuming. French captain Kylian Mbappe said, and I quote, "We knew what kind of match we were going to have. We can also get our hands dirty. We know how to do it. We know how to play ugly football. Yes, they were thinking we were going to show up in tuxedos, but we were ready."
6: Ça se joue à peu de choses. Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs, aient gardé leur maîtrise, parce que face à ce qu'il y avait, ça aurait pu. Et ça ne... Évidemment, si on tombe là-dedans, malheureusement, l'Allemagne y est tombée un petit peu. Moi, j'aurais dit, rester sur le jeu et ce qu'on sait faire. Voilà, mais après, il y a tellement...

0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath took a swipe at the opposition, alleging that it lacks any clear ideology. In a post on X, he claimed that while opposed, opposition parties had begun opposing India itself. Calling it their daily routine, Yogi Adityanath accused his political rivals of making opposition for its own sake. That's the word coming in from Yogi Adityanath.
1: जिन्हें कोई विचारधारा नहीं, भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैविक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं।
0: And the Ram Mandir politics, political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have leveled sharp allegations over the thefts linked to the temple. Responding to opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that the BJP would not allow anyone to play with the faith of the devotees. Naming Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, both of them accused anti-Hindu forces of seeking political mileage.
2: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिर अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे।

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: The political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have leveled sharp allegations over the thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith associated with Lord Ram Temple, and party was ready to make any kind of sacrifice. BJP President also named the Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and convener Arvind Kejriwal. He accused them of being anti-Hindu forces and seeking political mileage.
1: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।

0: जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
1: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, आपला आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
2: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
3: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
4: अब तो पूरा देश जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई। आप लोग बहस कर रहे हैं, सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: होगा जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.

0: कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने के। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब ये भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है, और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अरे हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा

0: enhance CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have leveled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं. मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों. ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी.
2: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं. भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है. जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
3: पूरा देश मर्माहत है. और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं. जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे. और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं.
4: आने हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पण मूर्ख नाही हो. आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा. अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है. आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील.
5: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं. सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के. क्या आपका जवाब?
6: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई. एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ,

0: और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
1: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अरे हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोले हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे, वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैविक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है, और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे, और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। अपना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. अरे ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी.
2: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं. भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है. जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
3: पूरा देश मर्माहत है. और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं. जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे. और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं.
4: हिंदू भोरे आहोत, बाबरे आहोत, पण मूर्ख नाही आहोत. आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नाही करेगा. अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है. आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील.
5: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
6: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
7: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई। आप लोग बहस कर रहे हैं, सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है, और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे, और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोले हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नाही करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. अरे ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी.
2: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं. भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है. जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
3: पूरा देश मर्माहत है और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं. कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं. जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे. और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं.
4: हिंदू भोरे आहोत, बाबरे आहोत, पण मूर्ख नाही आहोत. आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नाही करेगा. अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है. आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील.
5: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
6: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
7: अब तो पूरा देश जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है, तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था और यहां के मुख्यमंत्री

0: मंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अरे हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पण मूर्ख नाही हो। आपल्या हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आज हिंदू माफ नाही करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champath Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू

0: जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैविक दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। अपना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं. और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से

0: अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था। और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत है जो ऐसा काम किया है। प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champath Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकते जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन

0: कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
1: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
2: अभी हिंदू भोले हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
3: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
4: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
5: अब तो पूरा देश जान गया और तमाम संगठन आपस में बैठ कर के इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: And the Mumbai civic apathy claims another life, 3 deaths in just 5 days in Mumbai. All 3 lives lost to falling trees. Yet, where's the accountability? 1st of July, an 11-year-old boy was crushed to death. 3rd of July, the son of a former deputy mayor lost his life. And now on the 5th, another man has been killed after a tree fell on him in Kurla. 3 deaths, just 5 days, have turned Mumbai's trees into symbols of civic failure and planning. After the tragedy in Kurla, protesters confronted Mumbai mayor and demanded suspension of the responsible officials. Mayor Tauri, in response, assured action in the matter. Heavy rain has impacted flight operations for an hour at Mumbai airport. 4 Indigo flights were cancelled and 13 flights that were diverted due to bad weather. However, they landed back in Mumbai later once the weather conditions were stable.
1: मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको इस पूरे हादसे के बारे में अधिक जानकारी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं जानने की। आपका नाम क्या है सर?
2: संतोष मुन्नी।
1: संतोष जी, आप बताइए कि क्या आप थे यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ या आप आसपास थे?
2: मैं आसपास था।
1: बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ?
2: तो अपना जैसा तूफान जैसा आया, बारिश ज़्यादा हुआ, उसके बाद वो बाप बेटा आए थे इधर दुकान डालने के, दुकान अभी नया नया लिए अभी भाड़े पे, अभी वो सामान भरने के लिए आए थे, गाड़ी जैसा बाइक खड़ा किया तो फिर इधर से गिर गया, झाड़ से गिरा तो उनका ऊपर ही गिर गया, बाप का
1: ऊपर सीधा
2: गिरा, तो उनका थोड़ा इधर था लेने का टाइम पे उनका ऑफ हो गया।
1: उनके बेटी को भी
2: बेटा को कुछ मारने लगा इतना।
1: और बताइए कि ये झाड़ी काफी बड़ा झाड़ी, काफी पुराना है, और क्या ये हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है गिरने का, इसका डर रहा है?
2: पहली बार अभी हुआ, पहली बार हुआ है, लेकिन ये झाड़ निकलना चाहिए, ये झाड़ कभी भी गिर सकता है,
1: उसका कहना है कि ये झाड़ निकलना चाहिए।
0: And DMK versus Vijay Sarkar intensifies. DMK supporter Saran was arrested in an alleged online harassment case and later granted bail shortly after being produced before the court. The complaint was filed by a TVK supporter who

0: And the political temperatures continue to rise over the alleged Ram Mandir donation theft. Following the alleged theft, the Temple Trust has introduced stricter donation counting protocols, enhanced CCTV surveillance and tighter operating procedures to improve transparency. On the other hand, a key trust meeting is scheduled for the 6th of July, where a decision on General Secretary Champat Rai's resignation is expected. Opposition leaders have levelled sharp allegations over thefts linked to the temple. Responding to the opposition, it was BJP President Nitin Naveen who said that BJP would not allow anybody to play with the faith and devotee of Lord Ram. Naming Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, he accused the opposition leaders of being anti-Hindu and seeking political mileage out of the controversy.
1: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se wahan par charcha kar rahe hain. Main aaj us charcha par zarur aaunga mitro. Ye wahi log hain जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते. पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे. हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं. हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं. बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे. वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी.
2: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं. भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था तबाह.